ऐसो भावले गाया वायो दशरथ को पोखी मा जनमूला जानम दीने जानक देवी सीता जीवानूला।

जाए। आत्मा गानो काग माठो प्रो नारी मालिए कैंडा कोरल मिर्गा तित्रा मारे यौता मारे गैंडा।